जी हाँ, शेकीत आपको पसंद आया होगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सॉन्ग हम आपको नेक्स्ट सुनाने वाले हैं। लेट्स सी, एक गीत है हमारे पास और आशा है कि ये गीत भी आपको पसंद आएगा।

0: बोला बोला पलरा वाली मैया की जय।
1: जी हाँ, आशा ये गीत आपको पसंद आया होगा। इसमें और भी कुछ है, और भी आगे गीत है जो हम आपको सुनाएंगे, और आपसे अलविदा भी लेना चाहेंगे कि हमारा समय हो चुका है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे इसी तरह फ्रॉम 5 PM to 6 PM, और बीच बीच में जो लोग हमें फेसबुक में फॉलो करते हैं हम जुड़ जाते हैं कुछ वीडियोस लेकर, बिकॉज हमें जब कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है जो समाज के लिए होता है देन हम कोशिश करते हैं आप तक पहुँचाने के लिए। तो चलो शुक्रिया, एंड ये गीत हम आपके लिए छोड़े जाते हैं।